0: महरू पैडल हो दूँगा ना
1: पांदर हाथराई हाथलिहाई
2: श्रीलंकी रिद्म विश्व सिसारा
3: लाइव एफएम लाइव एफएम.lk